0: Aman.
1: Ondan da ilk o şavgat atlar.
2: Şavaş. Şere. Emal paran yandır.
3: Çok umutlar.
1: Ay Cemre! Her hafta! Söyle Cemre!
4: मेरी बॉडी तो देखने पागल हो जाएगी। मैं रिंग सिंगिंग से कार्य चुते सिंगी होते दीपे वालों।

तू क्यों व्यर्थ है? जिसने प्रथाए नौवे पातशाही ने विकथन किया, हर की गत नाही को जाने, जोगी जति कपि पछारी अर बहलोक सियाने। तू बेअंत को विरला जाने, को विरला जाने, गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, रंग हाय मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा। तू बेअंत अपनी माया आप सारी, आपे देखन हारा नाना रूप तरे बहु रंगी सब तेरे नियारे। तू बेअन ब्रह्मा न जाने अंत न पावत देव सभी, मुन इंद्र महाशिव जो करी। तू बेअन अत ऊंचा ताका दरबारा,

ना परख होवे ते कोई कच कह देगा कोई पत्थर कह देगा। जिन्हू पता है हीरे का ओनू पता है। ये दाना तो निका जे है, टुकड़ा छोटा जे है, मुल बहुत है। जितना वो कीमती है जिसले मुल पवाया जावे घर भर जाने। सत्कारयोग भाई साहब भाई गुरदास जी गुरसिख पंथ दे श्रोमणी विद्वान धन गुरु नानक दे दर दे अनन सिख भावे असी नातेदारियां भी गिणने हैं गुरु अर्जन साहब दे मामा जी पर नहीं गुरसिखी विच तां नाता प्रेम दा है गुरु नूं समझण ते गुरु नूं मनण दा है। भाई साहब ने गुरु के बचन नूं समझे अरे भाई साहब की रचना नूं असी गुरबाणी की पूंजी भी कह देने क्योंकि भाई साहब बाणी नूं समझदे ने बाणी नूं समझाउणा भी जानदे ते निरा समझण समझाउण की गल नहीं कमाउणा भी जानदे। अपने जीवन विच भाई साहब ने गुरबाणी नूं कमाया उन्हां नूं पता है गुरबाणी के किन्ने वड्डे महत्व ने। कहिंदे ने गुरु का सच्चा बचन इहदा महत्व शायद संसारियां नूं पता ना लगे जिवें तली ते पै हीरे का हर एक नूं पता नहीं हुंदा। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਦੇ ਵਿਕਣ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਜੌਹਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜਾਵੇ ਘਰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਦਾਣਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜੈਸੇ ਹੀਰਾ ਹੱਥ ਮੈਂ ਤਨਕ ਸੋ

जगी और न यहे महात्म में अवतारी उजागिर यान कियो तिनके दुख कोटिक दूर गे मथुरा जिन अमृत।

सुन बेद बिरंत बिचार रहो हर जप न छाडो एक करी। मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत।

अपने आप साजिया ने आपे ही नम खलोवा आपे पट्टी कलमिया आप लिखन हारा हुआ सब उमर

समझदार सोजी वाले आ, एक होर रस भी है जिनू नाम दा रस कहिंदे, हरी दा रस कहिंदे, होर बड़े स्वाद तू वेखे होंगे। मालक ने बड़ी प्यारी रचना बनाई, साढ़े जेड़े ज्ञान इंद्रे ने ना, पांच ज्ञान इंद्रे, फाइव सेंसेस, अखा वेख दिया, जीब चख दी, कान सुनदे ने, नक सुंघदा है, शरीर दी त्वचा, शरीर दी स्किन जो है छो के पता लाउंदी आला दुआला की है। लेकिन ये एक होर भी गल है, इन्हां पंजां ही ज्ञान इंद्रियां च मालक ने रस भी पा छड़े, स्वाद भर छड़े, अखां वेखदियां भी ने, वेखण दा रस भी लैंदियां, जे तां नजारा वधिया है ते अखां रस लैंदियां, ते जे नहीं तां फिर मूंह दूजे पासे भी हो जांदा। जे सुनी जाण वाली आवाज सुरीली है, रस विच है, सुर विच है, ते बंदा ध्यान नाल सुणदा है, बल्कि हमातन गोश सारा शरीर कानी बन जाता है, पूरा ध्यान। पर जे वो आवाज बेसुरी हो ते कन्ना चुंगला भी दे लेता है, अणपौंदा शोर हो ते नहीं भी बर्दाश्त होता। इसे तरह सुंघण की शक्ति कदे बदबो भी लैंदी ते दुखी भी होंदी, खुशबू नाले सुखी भी होंदी, जीव ते कुछ कौड़ा आ जावे ते थू थू भी बंदा करदा है, कुछ स्वादला आ जावे ते अखां भी बोलदियां ने रस आया। इन्हां पंजां ज्ञान इंद्रियां विच ही रस मालक ने भरे, ये नखेड़ लैंदे ने रस देण वाली केड़ी केड़ी वस्तु, ते फिर उस रस पिछे, स्वाद देण वाली शय पिछे कई बार बंदा कमला भी हो जाता। इथों तक कमला होया बंदा कई बार इन्हां रसा पिछे, सुन दे रस पिछे, सुंघण दे रस पिछे, वेखण दे रस पिछे, छोण दे रस पिछे, चखण दे रस पिछे, इन्हां स्वादां च कई बार बंदा इन्ना कमला हो गया जानवरां तों वी थले जा गए। पावन बाणी च बचना है, मृग मीन भृंग पतंग कुंचर, मृग नूं हिरण नूं कन्ना दा रस है, मच्छी नूं जीभा दा रस है, पवरे नूं सुंघण दा रस पिया है, फुल दे विच बैठा बैठा विच ही शहीद हो जांदा, फुल मिटिया जांदा विच खत्म हो जांदा, पतंगा अखां दे रोग दा मारिया है, इहनूं वेखण दा रस है, ज्योति उत्ते सड़ मरदा है। पर महाराज कहिंदे ने देखो कैसी गल है, मिर्ग मीन भृंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश, इन्हां नूं एक एक स्वाद पिया है, ते पंच दोख असाध जामे, बंदे नूं तां पंजे पंजे कट्ठे भी लगे होए, तां वी तां की केत कास, इहदा किवें बचा होए। असल गल इह है कि बंदे नूं अंदरला रस नहीं आया, एक आत्म रस भी है। साहब कलगीधर पातशाह ने वचन किया, साहब कहिंदे ने

0: देह दस मन चाओ न जाए विसूरिए, देह दस मन चाओ न जाए विसूरिए,
1: पवित्र सही चरना धूलिए।

और भाईचारे का उपदेश है। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह कहते हैं, साच कहो सुन ले लो सब है, सारे सुन लो, साच कहो सुन ले लो सब है, जिन प्रेम कियो सारे जपो न भरी, जिन प्रेम कियो तिन ही भग पायो। जिन्हों ने उस ईश्वर के चरणा नाल प्रेम कीता प्यार कीता, चरणा नाल प्रेम कीता प्यार कीता, उन्होंने ही उस ईश्वर की प्राप्ति हुई है। सात संगीत बोलो।

कोठड़ी विच आ बालक जन्मे है, ओ सारी कोठड़ी प्रकाशमान हो गई है। और जिवें

मेरे हथां विच अनेक बालक पैदा होए, लेकिन ए तां कोई अनोखा ही बालक है। दर्शन पा के दौलतां दाई धन हो गई। सत सिगत बोलो श्री वधाई दीती से। बार आई कोठरी विचों वधाई दीती, मैता जी वधायों

मेहता कालू ने समा लिख लिया और जदो सवेरा होया अमृत वेले पंडित हरदयाल दे घर गया और कहन लगा रात मेरे घर बालक हुए है।

ज्योतिष विद्या कदे गलत नहीं हुई। मेरे हिसाब नाल ए बालक दुनियावी बालक नहीं, ए तां परमात्मा दा रूप है। सात सगत बोलो श्री, ए प्रभु दा रूप है। मैता कालू ने खुश होके पंडित हरदयाल नूं इनाम वजों धन दिता और प्रसन्न होके घर आया। हुण चारे पासे माता तृप्ता नूं मैता कालू नूं वधाइयां मिल रहियां हन कि अज बालक ओ बालक पैदा होया जिसका दर्शन करके सब दा तन

तू बेअंत को बिरला जाने को बिरला जाने। गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द रंग हाय मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा नाना रूप तरे बहु रंगी सब तेरे निया तू बेन ब्रह्मा न जाने अंत न पावत देव सब मुन इंद्र महाशिव जो करे तू बेन अत ऊंचा ताका दरबारा अंत

ही नहीं कोई रंक भी सेवा कर सकता है। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने एक मटका लिया, एक मग लिया, ते आंदे जांदे राहियां नू पानी पिलाना शुरू कर दिता। भाई जिथे पानी पिलाया गुरु नानक सच्चे पातशाह ने, अज ओथे गुरु नानक प्याओ दा गुरुद्वारा बनिया होया है। संगतां जांदियां हन, प्यासियां जांदियां हन, तृप्त होके आउंदियां हन, मन दियां आशावां लेके जांदियां हन, मनोकामना पूरियां करवा के आउंदियां हन। बाबा नानक जी दी इस प्रेरणा नू ले करके, इस सेवा नू सामने रखदे होए, भाई साहिब भाई गुरुदास जी सारियां नू

एतन होती खाक में मारी गोर करे, एतन होती खाक निमाणी गौर करे। अज मिला शेख फरीदा तत्म पूंजणिया, अज मिला शेख फरीदा तत्म पूंजणिया, मनो मचंदणिया जे जाना मर जाइए कुम न आइए झूठी।

गगा गोविंद कुंद्रवो सास सास जपनीत कांब सासा देता बिल मना करियो मीत मैं

चले चलना हार बिचारा ले मनो चले चलना हार बिचारा ले मनो गंढेंदिया छे मार तोड़ेंदिया चिट्ठी नो जिमें

लाश करे जीवन पर कारण लोचन कछु न सूझे कैद कबीर सोरे प्राणी कैद कबीर सुनो रे प्राणी छोड़ो।

समझ अचेत चेत मन मेरे, समझ अचेत चेत मन मेरे, कथे संतन अकथ कहानी, लाभ लियो हर हृदय अरादो, छुटके आओ जानी। जीव तो व्यवहार है जको तो जानो, जीव तो व्यवहार है जको तू जानो, नानक हर गुण गाए ले सब सुख समान, हर गुण गाओ मना सदगुरु सेव प्यार।

हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक। मुंह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक। अवगुण कौन चितार अवगुण कौन चितार गल से ती लायक। ज्ञान रास नाम तन सौंपियों नू इस सौदे लायक। सांझी गुरु नाल बहाले मैनू एक भाईवाली कराई मेरे वाहिगुरु ने गुरु नानक सच्चे पातशाह नू मेरे नाल भाईवाल रला दिता। जानी साडा दोवां दा सांझा

जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, तिस बारक भूख कैसी, नवनिध नाम निदान गृह तेरी, मन बाचित सो लैसी। पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी, बारक मुख मांगे सो देना। पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी, बारक मुख मांगे।

श्रेय लगेगा, अगे ओ वधेगा, आत्मक उन्नति ओ करेगा जेड़ा गुरबाणी नु खोजेगा, समझेगा, विचारेगा, अमल विच लियावे। कहिंदे ने ना कोई समझे, कसूर किसे होर दा तां नहीं। मिसाल भाई साहब ने बड़ी प्यारी दिती, कहिंदे ने समुंदर दीआं तहां विच पता नहीं कितना कुछ पिया। पहला तां समुंदर दी गहराई नहीं पता लगदी, ते जो कुछ धरती ते उपलब्ध है ना, सवाए कुछ कुछ चीजां जिहड़ियां धुप ते खुशकी मंगदियां, बाकी धरती का सारा पदार्थ समुद्र के अंदर मौजूद है। सोना चांदी हीरे जवाहरात इथों तक कि इस वेले तां बंदा अपनी खाद खुराक के मामले में भी समझदा ना, धरती तो पूरी ना हुई तो समुद्र दीआं तहां विच बड़ा कुछ मौजूद। समुद्र दीआं तहां च पाए जाण वाले इतने ऐसी किस्म के पौधे ने जेड़े हेठां तहां विच ही पलदे ने, तहां विच ही खत्म हो जाते। ये तो शरीरक लोड़ा साड़ियाँ कि असीं उधर झाकने, बाकी बड़ा कुछ इतना है। धरती के वरतों में आ रहे सोने नालों दर्जना गुणा ज्यादा सोना समुद्र दीआं तहां विच मौजूद है। कितने हीरे जवाहरात समुद्र की तह ने लुका रखे, पर हथ किनू आते ने। आप एक मोती की गल करी, सिप्पियां समुद्र के कंढिया ते पहियां रुलदियां ने, उन्हां च मोती नहीं होंदे। जिवें असीं गल्लां बड़ियां करने आ, हर गल का मतलब नहीं होंदा, हर गल विचों कुछ लभण वाला नहीं होंदा। लभदा उस सिप्पी विचों है जिहड़ी खास टिकाणियां उत्ते वड्डे आकार की, जिहदे विच जीण वाला जानवर, उस सिप्पी का जानवर जिहड़ा मोती जानवर जिसनूं कहिंदे ने, वह अपनी लभ तो अपने अंदर आए हुए पानी के कतरे नूं या रेत के दाने नूं अपना लुआब लपेट के मोती बना दिंदा। वह मोती ना केवल सिंगार के काम आया है, बल्कि उस मोती ने कई बार मनुख दीआं कई बीमारियां नूं कट के दवा का काम भी किया। भावें गल वक्री, अज दे वैद चुके कीमती सिप्पियां नूं ही पी के ते मोती कह के वेच देंदे, सिप्पी का ही कुछ तो करदे ने। कहिंदे ने भी तां उसे लभ तों ही बणे है जिस तों मोती बणदा, लेकिन नहीं, सिप्पी सिप्पी है, सिप्पी के अंदर बनने वाले मोती की कीमत बहुत ज्यादा है। राजे महाराजे उहदा मुल पाउंदे सन, पर हर कोई तो उस मोती ना लै सकिया। आखिर किसी ने पानी के अंदर कुद के पानी के अंदर गहरी छलांग लगाई। अज तो बड़े साधन हो गए, पुराने समय च सह रोक के टुबियां मारते, सह रोक के इन्हें अभ्यासी लोग किन्ना किन्ना चिर सह रोक के घड़ियां बधी और समुद्र दीआं तहां विच मोती दी सिप्पी लभदे सन, लभ के लिया के उहदे चों खोज के, फिर हर मोती चों सिप्पी नहीं लभना, किसे किसे मोती चों लभना, किसे किसे सिप्पी विचों मोती लभना, उन्हूं विन के मुल पौना जानदे सन। यह एक मोती की गल नहीं, भाई साहब तो कहिंदे ने समुद्र च बड़ा कुछ है, पर वो मोती जिहड़ी है ना केवल गोताखोरां की खोज दी सिटे की फल की गल है, बल्कि एक होर भी गल है कि जिवें मान सरोवर च कहिंदे ने मोती बहुत होंदे, पर उत्थे किनारियां ते बैठे बगले सिप्पियां ते डड्डुआं नाल ही कम सारदे ने। हंसदी क्योंकि खुराक मोती है, वह सिप्पी मोती वाली सिप्पी चुन के लिया तह विचों टुब्बी मारदा है, चुन के लिया उस सिप्पी नूं खोलदा है और बड़ी औखी खुलदी। ये जानवर ऐसा घुट के मीटदा है अपनी सिप्पी नूं, बड़ा मुश्किल खुलदा है। आम तौर पर यह मोतियां के जिहड़े खोजी हुंदे ने इहनूं धुप्पे सुट छड्दे ने, वह मर जांदा है सुक के, ते विचों मोती कढ लैंदे, पानी की थुड़ तों मर जांदा है, सुक जांदा है, नहीं तां सिप्पी खोलणी इक मसला बण जांदा। लेकिन हंस करदा है मेहनत, उस सिप्पी नूं खोल के मोती जानवर के मूँह विचों उहदे कब्जे विचों मोती कढदा है, ते कढ के निकल लैंदा, उहदी खुराक है। ते जे उहनूं सिप्पियां चों डिगे मोती लभ जाण ते उहदे पार, उह तहां विच जांदा है, मान सरोवर दीआं तहां च जा के मोती लभदा है, उहदे बिना उहदा जीवन नहीं। हंस दा जीवन मोती है, इसे तरह सिख दा जीवन नाम है, ते नाम इसनूं मिलदा है बाणी दी खोज विचों। कहिंदे जिवें समुंदर विच सरोवर विच बेअंत पदार्थ पए होए ने, मोती भी उत्थे मौजूद है। हंस गहरी टुब्बी मार के श्वास रोक के औखा हो के, जरूर विश्वास रखो नेचै प्रसाद पावई, अपने छकन जोगे मोती लभ लिया। कहिंदे जैसे पर्वत हीरा मानक पारस सोध, पर्वतां विच हीरे भी होंदे मोती भी होंदे ने, पर्वतां नूं खोज के उन्हूं खनवारा जिहड़े
खाना पट्टन वाले लोग ने उन्हां पर्वतां नूं पछाण के कि किथे हीरा हो सकदा, किथे कीमती पत्थर हो सकदे। खण के मिट्टी छाण के पत्थरां नूं तोड़ के ओह हीरे कढ लिआउंदे, ते निरे कढ नहीं लिआउंदे, उन्हां नूं चमका के पालिश करके उन्हां नूं ठीक डायमेंशनस दे के ओह संसार च मुल पाउंदे ने। उन्हां दा हीरा बड़ी सख्त चीज है, यह टुटदा नहीं छेती कीते। इसनूं तराशना, इसनूं एक शेप देनी, बड़े समय तो एक बड़ी पुरानी बड़ी चिड़ी कला चली आई। बहुत औखे होके कारीगरां ने इसकी शेप बनाउंदे रहे, इसनूं सुराख देंदे रहे, इहनूं मुंदरियां विच गहिणियां च जड़दे रहे। राजियां महाराजियां दे ताजां दा सिंगार बनदा आया, पर जिन्हां ने पर्वतां विचों कढ के लिया के दस्सिया संसार नूं कि आ हीरा जे धन है, उस दी कमाई कमाल है, उसकी खोज। कहिंदे ने खनवारा पर्वतां नूं ते जमीन दीआं तहां नूं खोज के हीरा कढ लिआउंदा। कहिंदे इसे तरह एक होर भी गल है, जंगल दे विच कपूर हुंदा है, कैंफर हुंदा है, जंगल च चंदन हुंदा है, होर कितने फुल हुंदे ने, पैदा हुंदे ने ते सुक जांदे ने, खत्म हो जांदे ने। लेकिन एक खोजी उठदा है, वह जाके चंदन कपूर ते होर खुशबुआं दे साधन लिया के उन्हां च इत्र कढदा है ते शीशियां च बंद करके, वह सेंट शीशियां च बंद करके साडे तक पहुंचा दिंदा। ओहदी मेहनत नूं दाद देनी पैगी, नहीं तां जंगल च पिया खत्म हो जांदा। जंगल च पई वह हवा च रल जाती खुशबू, लेकिन उस मेहनत करने वाले ने, उस सुबासी ने, उस सुबास जिहड़ी है साडे नक्कां तक साडे घरां तक पहुंचाई है, साडे सुंघण जोगी कीती है, उन्हें बड़ी मेहनत की। जिवें उसने मेहनत करके आम बूटियां ते रुखां नूं एक छोटी जी इत्र दी शीशी विच बंद कर दिता ते खुशबू प्रगट करके बाजार च ले आंदी, जिवें पहाड़ां नूं तोड़न वाले, पहाड़ां नूं खणन वाले खणवारे ने हीरा संसार च ले आंदा, जिवें हंस मर जीवा मान सरोवर दीआं तहां चों मोती लभ लैंदा, इवें गुरु का सिख गुरबाणी विचों एक नाम की गल नहीं संसार दीआं सारीआं वडियाईआं ते सारीआं खुशियां लभ लैंदा। गुरु की बाणी विचों ए दैवी गुण लभ लैंदा, सत संतोख दया धर्म नूं धारण करदा, उद्दम नूं धारण करदा, मस्तियां भी लैंदा है।

दिव्यास जिन्होंने गुरु नानक सच्चे पातशाह तो लै करके गुरु अंगद देव जी महाराज, गुरु अमरदास जी महाराज, गुरु रामदास जी महाराज ते गुरु अर्जन देव जी महाराज दे जीवन च चात मारी, गहरे जा करके के गुरुआं दे जीवन कैसे सन, कैसियां कैसियां सेवावां गुरु महाराज ने कीतियां अपने जीवन विच, ते फिर बई संगतां नू प्रेरणा कीती कि ऐसियां सेवावां करन नाल वधेरे फल मिलदे हन। पाईसा पाई गुरुदास जी, गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह निमाणियां दे मान, नितानियां दे तान, नियोटियां दी ओट, नियासरियां दे आसरे उना दे जीवन विच चात मारी ते की देखिया के भाई गुरु अंगद देव जी महाराज दी सेवा कीती, उन्हानू रोज इशनान करवाया, ते फिर एक दिन ऐसा आया जदों गुरु अंगद देव जी महाराज पासों अनेकां फल प्राप्त कीते। साडे देश दे विच गंगा नू पवित्र मनिया जांदा है, सनातन तो सनातन गंगा दी पूजा कीती जांदी है, ते गुरु अमरदास जी अजे गुरु नहीं सन बने, बाबा अमरदास जी सन 72 साल दी उम्र तक अपने जीवन विच हर साल मंडली दे नाल हरिद्वार जाया करदे सन, ते हरिद्वार जा करके पाठ पूजा करनी, संतां दा संग करना, ते फिर बई गंगा दा इशनान करना, ते गंगा दे इशनान करन दा फल प्राप्त करना। एक दिन ऐसा आया, इशनान कीता, जिथे आसन लगाया सी उथे नाल ही पंडित जी दा आसन सी। पंडित जी बड़े विद्वान, पंडित जी ने

मन टिका विच आ गया। नूरानी कोलों पुछया जा करके, बच्ची ए जो पाठ कर रही है ए किसदा उचारण कीता होया है? अगों जवाब मिलिया, पिता जी ए ते बाबा नानक जो कल युग दे अवतार आए संसार ते उना दी पवित्र बाणी है। उना ने कहा, जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वेला लो। मानो ज्ञान हुंदा गया। बच्ची दे प्रवचन सुने बाबा अमरदास जी चैन नाल कर नहीं बैठे। उसे वेले जा गुरु अंगद सच्चे पातशाह दे चरना ते मत्था टेकिया। अगों गुरु अंगद देव जी महाराज ने प्यार कीता, सत्कार करन लगे ते बाबा अमरदास जी कहन लगे, गुरु महाराज मैं आज कुड़म बन के नहीं आया। मैं जानदा हां कि आप मेरे छोटे भरा दे सदके मेरा सत्कार करना चाहते हो, पर मैं ते आज दास बन के आया हां। आज ते मैं अपनी चोली खैर पवान आया हां। मेरे ते कृपा करो, मैनू अपना सेवक बना लवो। गुरु अंगद देव जी कहन लगे, आप ते मालक हो, घर दे मालक हो, आए हो ते गुरु नानक दे घर दी सेवा करनी शुरू कर दे। देखदे देखदे बाबा अमरदास जी सारा दिन संगत दी सेवा कर दे, लकड़ा टोन दे, लंगर दे विच प्रशादे पकांदे, संगता नू छकांदे, ते फिर गुरु महाराज दी भी सेवा कर दे। रात पै जांदी ते सारे सेवक सौ जांदे ते गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ए गागर लेके ब्यास वल चल पैंदे। बाबा अमरदास जी एक दिन जदों ब्यास तो गागर चुक के पुठे पैरी आ रहे सन ते जुलाही दे ताने पेटे नाल पैर दा अंगूठा लग गया, डिग पे। आवाज आई अंदरों जुलाही ने किया के कौन हो सकता है? जुलाहे ने भी किया कौन हो सकता है, ते जुलाही ने फिर कह दिता, होवेगा ओहो ही अमरू ने थावा। कहन दी देर सी इधरों अंतरयामी पातशाह गुरु अंगद देव जी महाराज नू अंतर ध्यान होए सन, जेड़े पता चल गया कि अज मेरा सेवक जिसनू ने थावा किया है, इतनी सेवा करन वाला, करड़ी सेवा करन वाला जिसनू निथावा किया है, उसनू ते निथाविया दे थाम होना चाहिदा है। बस भगती परवान होई, सेवा परवान होई, ते ज्यों ही आ करके बाबा अमरदास जी गुरु अंगद देव जी नू इशनान कराया ते इशनान करके बिठाया तखत ते वर देने शुरू कर देते। भई बाबा अमरदास जी तुसी ते निमाणियां दे माण हो, निताणियां दे तान हो, निओटियां दी ओट, निगत्तियां दी गत, पत्तियां दी पत। पाई साहब भाई गुरुदास

जी ने इस सेवा नू जदों परवान होया देखिया ते फिर बई कवित दे विच कलम बद कीता, इस कारण करके कि आन वाले संसार दे सेवकां नू पता चल जावे कि एक गुरसिख नू इशनान करन दा कितना कु फल मिल सकता है। मगर ओ गुरसिख होवे गुरु अंग

कैसियां पवित्र सेवावां गुरु नानक सच्चे पातशाह दियां हन। ते नजर आया कहंदे ने पिता कल्याण दास जी ने 20 रुपये दिते सन कि बच्चे कोई खरा सौदा करके आओ, सच्चा सौदा करके आओ। 20 रुपये लेके चल पे, जाना ते सी चूड़ काने, मगर रस्ते दे विच ही एक साधु ते संतां दी मंडली नजर आ गई। ऐसी मंडली जेड़े कई चिरां तों अनेकां दिनां तों परमेश्वर दी आस विच बैठे सन,

राजा ही नहीं कोई रंक भी सेवा कर सकता है। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने एक मटका लिया, एक मग लिया ते आंदे जांदे राहियां नूं पानी पिलाना शुरू कर दिता। भाई जिथे पानी पिलाया गुरु नानक सच्चे पातशाह ने, अज उथे गुरु नानक प्याओ दा गुरुद्वारा बनिया होया है। संगतां जांदियां हन, प्यासियां जांदियां हन, तृप्त होके आउंदियां हन, मन दियां आशावां लेके जांदियां हन, मनोकामना पूरियां करवा के आउंदियां हन। बाबा नानक जी दी इस प्रेरणा नूं ले करके, इस सेवा नूं सामने रखदे होए भाई साहब भाई गुरुदास जी सारिआं नूं

पर फिर सोचे मना ए जेड़े फुल तू सुचे समझ के लिया है ए ता झूठे किवें जदों फुल खिड़दा है ता पवरा उन्हों

पर सोचे है मना जेड़ा दूध तू सुचा समझ के खीर बनाई ए दूध ता झूठ है किस तरह जदू गां चोई दी वच्छा छड़ी दे वच्छा गां दे थान चुंग दे ते किट

इस तरह रम्यो होया है जिस तरह दर्पण शीशे दे विच साडा चेहरा मौजूद है जदों शीशा देखांगे सानू साडा मुंह नजर आवेगा इसे तरह ही वो परमेश्वर है जदों देखांगे

या बाल्टी ओदे विच चाकीए तां सानू साडा चेहरा नजर आवेगा। इसे तरह ही सारे विच परमेश्वर जदू देखांगे ओदू नजर आवेगा। इन्नी गल कही शेर ने धौण नीवी कर ली, गल विच गलवकड़ी पा ली। नामदेव जी कहन लगे आ यार

पलो पयो प्रेत कया मनिया सुख सहज इस कर का जानिया हो बंदे प्रेख जुत बार अवनासी अगम्या पार ले पक्खा प्रे चल।